0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 6 PM
2: अहिले साँझको 6 बज्यो। किसान पाइप

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हर पल
1: हर तपाईं
0: सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: 7 PM
4: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 9 PM
2: अहिले रातको 9 बज्यो।